मोहंजी ब्रुहु कुनाभ आयावस कचक्रुनिता तुकुइरी को कुनाभ आयावस कचक्रुनिता।